0: ਬੇਨਤੀ ਬਾਏ ਬਾਏ
1: ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਸੀ ਕਾ ਦਾ आदाब याली मतलब मैं आपको हॉस्टल जलाल आपकी की हाजिर आपको सुन रहे हैं कॉफी जला और रेडियो सुसंगम 94% एफएम जी 8:08 हो गए और आज जो है बुध का दिन है तो आज जो है केडब्ल्यूजे कॉफी विद जलाल का जो है सेगमेंट का दिन है आज जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है केडब्ल्यूजे वर्ल्ड स्टेज इसलिए आज यहां पर एक बहुत ही सुपर डुपर इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे शहर बहुत प्यारे से शहर कैलगरी आ रहे हैं वो कौन है मैं आपको अभी दो मिनट में बताता हूं लेकिन उससे पहले उनकी जो टीम यहां पर मौजूद है उनके ऑर्गेनाइजर बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं अभी तो रिजवान भाई सलाम अलैकुम कैसे हैं आप
2: वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड थैंक यू जवाहर भाई
1: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग द आर्टिस्ट
2: या यू आर वेलकम लाइक इट्स एन ऑनर कि हम ये शो करने जा रहे हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ उनके जो टीम मेंबर मौजूद है करीम सुमार करीम भाई अली मुराद
3: वेलकम टू द शो कैसे हैं आप
1: बस जी अल्हम्दुलिल्लाह हाउ आर यू सब ठीक है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आई नो आई थिंक वी मेट सो मेनी टाइम बट दिस इज अच्छा आप दोनों का फर्स्ट टाइम लाइक जो है ऑन द रेडियो शो
3: आपके साथ
1: मेरे साथ जी
2: मेरा फर्स्ट टाइम
1: जी फर्स्ट टाइम चलो थैंक यू सो मच तो जो है अपना जस्ट फॉर अवर व्यूअर्स और लिसनर अच्छा यू नो वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल जो हमें देखना चाहते हैं तो प्लीज गो ऑन फेसबुक देन यू कैन वॉच मी रिजवान एंड करीम राइट हियर और यू कैन लिसनिंग इन ए कार सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अगर आप गाड़ी में सुन रहे हो तो ऑफकोर्स आप जो है ध्यान जो है आपको जो रस्ते पर होना चाहिए हाथ स्टीयरिंग होनी चाहिए एंड यू कैन एंजॉय द शो व्हाइल यू आर ड्राइविंग तो एक सुपर डुपर आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान से आ रहे हैं ही इज यू कैन से लेजेंड नाउ लाइक जब भी हम वी यूज टू लिसन टू हिम बैक होम इन पाकिस्तान यस इनका नाम है अली हैदर यस अली हैदर इज कमिंग टू कैलगरी फॉर द फर्स्ट टाइम रिजन
3: यस फर्स्ट टाइम पहली दफा
1: अच्छा तो पहली बार आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि जो ऑल ऑफ अस आर एक्साइटेड अबाउट इट जो खैर जिनको नहीं पता है सो नाउ यू नो और जो जानते हैं ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट इट कि ये अपने पहली बार हमारे शहर कैलगरी आ रहे हैं फॉर द वन शो ऑन जून द 12th के शाम को होने जाए वो कहाँ होगा कब होगा कैसे होगा आप जो किस तरह टिकट ले सकते हैं ऑफकोर्स विल टॉक अबाउट एवरीथिंग जो है फॉर द नेक्स्ट आवर तो आपने जाना कहीं नहीं सुनते रहिए के डब्ल्यू जे वर्ल्ड स्टेज ऑन कॉफी जला ओनली ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 एफएम रिजन भाई सबसे पहले आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप कहां से कब यू नो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स लिसनर कि ये पहली बार आपको सुन रहे हैं
2: जी मेरा नाम रिजवान है मैं ये कैलगरी में पहली दफा शो कराने जा रहा हूं और ये मुझे ये ऑनर नसीब हुआ है कि पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट को मैं कैलगरी ला सकूं मेरे साथ बहुत अच्छी टीम मुझे मिल गई जब भी मैंने प्लान किया वो टीम मेरे साथ है मेरा पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक कराची से है
1: जी
2: और मैं कनाडा कैलगरी में पिछले 19 ईयर से यहाँ पर रहता हूँ मैं
1: अच्छा पिछले 19 साल से
2: जी
1: माशाल्लाह माशाल्लाह और तो ये पहला शो करते करते आपको 19 साल क्यों लगे जस्ट इन जनरल
3: असली बात बता दें ये सारे शो अटेंड करते हैं कोई ऐसा शो नहीं है जिन्होंने अटेंड नहीं किया हो और इनका पैशन था एक दिन आएगा कि मैं भी ये शो करूंगा और देयर यू गो आप सीधा स्टार्ट अली हैदर से कर रहे हैं
1: अली हैदर वो भी और चबू की कॉफी जलाल पे
2: जी बिल्कुल
1: यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में आने पे हमारे शो पे आने के लिए और माशाल्लाह देखिए आपकी किस्मत ने क्या रंग यहाँ पर जो है गुगली खाई है
2: जी नहीं बिल्कुल ऐसे ही है मैंने प्लान किए थे मैं पिछले 1.5 साल से प्लानिंग करते हुए आ रहा था
1: डेढ़ साल से ओ, वाह,
2: और
1: ओके।
2: मुझे टीम नहीं मिल रही थी जब मुझे टीम मिली तो उसके बाद मैंने ये कंफर्म किया कि हम इस लेजेंडरी आर्टिस्ट को हम कैलगरी में लेके आते हैं फर्स्ट टाइम इन कैलगरी
1: जी जी जी जी जी करीम जो है वेलकम द शो दिस इज योर फर्स्ट टाइम एज वेल जस्ट फॉर इंट्रो फॉर आवर व्यूअर्स लिसनर के हु इज करीम
3: करीम सुमार आप कैलगरी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं आई एम मोर इनटू इवेंट इंडस्ट्रीज और साथ में काम कर रहे हैं रिजवान के हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इनके साथ और इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे माय एक्सपर्टीज आर बेसिकली स्टेज वाइब साउंड एंड आपको वो मजा दें जो आप मजा अली हैदर से चाहते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल सो रिजवान भाई यू नो व्हेन वी जब भी हम जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स लिसनर यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी जो है लेजेंडरी आर्टिस्ट तो ऑफ कोर्स तो दिस इज अली हैदर तो ये पहली बार आ रहे हैं तो आपने अपना आपने सुने थे इनके गाने पहले आई एम श्योर यू नो हिम फ्रॉम द बैक होम
2: जी मैं इनके गाने सुनते हुए ही बड़ा हुआ हूँ इनके गाने पाकिस्तान इंडिया जो जो उर्दू लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज समझता है उनके लिए ये गाने हर एक के लिए बहुत बड़ी चीज है
1: जी
2: और बहुत इनके गाने इतने हिट हुए हैं कि जिसकी कोई एग्जांपल नहीं है जब मैंने इनका नाम सुना कि मैं इनको करके ला सकता हूं तो ये मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी और अली हैदर को आई नो हिम लाइक उनके गानों को मैं 1990 से उनको मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ
1: माशाल्लाह
3: 1980

0: 88 से इन्होंने शुरू किया था बिल्कुल इनका पहला गाना
1: तो ये शो यू नो लेट्स टॉक अबाउट यू नो बिफोर वी टेक अनदर गेस्ट ऑनलाइन तो ये शो कहाँ हो रहा है कब हो रहा है और अपना डियर जो है डिटेल उसके टिकट डिटेल्स
2: जी ये शो हो रहा है एस्टोरिया बैंकवेट हॉल में
1: ठीक है
2: गैलरी के अंदर एस्टोरिया बैंकवेट हॉल है और इसकी जो टिकट है वो इवेंट ब्राइट पे मौजूद है अलीगढ़ के इवेंट ब्राइट पे मौजूद है इसके इसकी जो भी चाहे वो इवेंट ब्राइट पे जाके अली हजर के शो को सर्च करके इसकी टिकट इजीली बाय कर सकता है
1: ठीक है
2: और इसकी टिकट में तीन कैटेगरीज रखी हुई है इसमें वीआईपी टिकट्स हैं जो बहुत जल्दी सेल हो रही हैं अगर किसी ने बाय करना है तो प्लीज उसको देर नहीं करें क्योंकि दे आर सेलिंग फास्ट इसकी एक और टिकट है जो कि इसकी रेगुलर टिकट्स हैं रेगुलर सीट्स हैं दोस आर ऑल्सो वेरी गुड सीट एंड दोस आर ऑल्सो सेलिंग वेरी फास्ट
1: चलो दैट्स गुड तो अपने करीम यू नो अबाउट द हॉल हाउज द हॉल आई नेवर बीन टू द हॉल
0: अच्छा हॉल बहुत खूबसूरत है फुली टाइल्ड है और आपको एक वाइब आएगी स्टेज इज वेरी ब्यूटीफुल
1: ओके
0: छोटा और खूबसूरत ये मैं आसपास कहूंगा वहां पे हमने बहुत कवाली शोज किए हैं और ऑडियंस साउंड वाइब बहुत अच्छा है वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 600 to 800 पीपल विच इज द कैपेसिटी ऑफ द हॉल
1: राइट
0: एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल
1: ओके सो ये जो हॉल है इट्स राइट ऑन द मैकनेट बुलेवर्ड
0: बिल्कुल
1: जो अपने टिम हॉर्टन्स के साथ जो अपना है एस्टोरिया बैंक्वेट हॉल
0: राइट
1: बिकॉज आई हर्ड सो मेनी जो है गुड थिंग्स अबाउट इट लेकिन हम जो कभी मौका नहीं मिला जाने का कभी बात नहीं बनी इंशाल्लाह विल बी गोइंग दिस टाइम एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी देयर एंड यू नो जब भी हम बात करते कोई अपने लेजेंड आ रहा है अपने जो है रिजन भाई यू नो आई जस्ट जो एको जो आपने बोला एक तो पाकिस्तान से आर्टिस्ट को आना इट्स नॉट ईजी जब भी वो लेजेंड आते हैं देन वी हैव टू शो अवर लव
0: यस
1: ताकि इसलिए कि अगर एक लेजेंड को प्यार मोहम्मद मिलेगी यहाँ पे देन द वर्ड गोज अराउंड कि भाई कैलगरी में जो वहां पे बहुत प्यार है बहुत मजा आता है शो करने के लोग पूरा खचाखच भरा होता है फिर वो दूसरे लेजेंड्स को हिम्मत बढ़ती है यहाँ आने की इसलिए कि टोरंटो वैनकूवर तो हर कोई आता है
0: बिल्कुल
1: कैलगरी एडमंटन लाना इज नॉट दैट इजी
0: राइट
2: जी हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को एक साथ करें जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पे स्पेशली जो हमारे 90s के जो लोग हैं और जो यंग जनरेशन है वो भी उनको सुने ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान की 90s की म्यूजिक जो कि कैसी होती थी
1: yes.
2: और वो म्यूजिक ऐसी है कि वो आप चाहे 90s में सुने या इस दौर में सुने
1: right.
2: आपको उसमें वही मजा आएगा जो मजा आपको जब वो लॉन्च होती उस वक्त आता था
1: जी बिल्कुल
2: तो बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी एक साथ हो हमारा
1: yeah.
2: बहुत अच्छा इवेंट हो और ये इवेंट बहुत हर कोई इसको एंजॉय करे तो इसी इवेंट को एंजॉय करने के लिए हमने ये प्लान किया है बेसिकली nice. तो
1: जी जी जी जी अच्छा यहाँ पे एक ना कमेंट आया है किसी की तरफ से लेट मी फाइंड इट वेयर इज एनी डिस्काउंट फॉर लाइक फॉर 10 पीपल और मोर फ्रॉम राहिल
2: जी बिल्कुल जी इसके इसके फ्लायर्स पे नंबर गिवन हुआ हुआ है मेरा नंबर लिखा हुआ है हमारा इसमें ग्रुप डिस्काउंट अवेलेबल है
1: जी
2: तो उसमें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल इसके लिए जो है ना
1: अच्छा आपकी टीम में कौन कौन है
2: हमारी टीम के अंदर करीम को आपने सुन लिया
1: यस
2: जी हमारी टीम में करीम है हमारी टीम में जारा है हमारी टीम में शहनाज दामजी है इसके अलावा हमारी टीम में राहत हैं राखी हैं फिर हमारी टीम के कुछ और मेंबर्स हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके नाम मैं लूंगा उसमें जहीर राहील माजिद
0: आबिद खान
2: वो भी हमारी टीम में है वो भी हमारे लिए काफी हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं
0: और सबसे बड़ी बात हमारी टीम नहीं है पूरा कैलगरी हमारी टीम है
1: वो होना चाहिए ना क्या बोलते अपना स्प्रेड होनी चाहिए ऐसी राइट राइट तो ये शो जो है जून की 12 तारीख को जो कि फ्राइडे नाइट है एस्टोरिया बैंक्वेट हॉल व्हाट टाइम द डोर्स ओपन
0: 7:30
1: साढ़े सात बजे डोर्स
0: और पूरा टाइम पे शुरू करने का मूड है तो ऑडियंस से गुजारिश है वी शुड स्टार्ट ऑन टाइम एंड
1: I think तो ये just 7:30 Astor Banquet Hall और then show start around 8 o'clock 8:30
0: probably around that time. लेकिन audience वहाँ पे आ चुकी होगी हम आपको ये guarantee देते हैं कि अली हैदर की जैसे entry होगी उससे पहले भी एक entertainment section शुरू होगा.
1: Okay.
0: We'll just have some gap for namaz and right. We are on.
1: Okay, there we go. Yeah, so I think जो भी होगा तो like you won't get bored.
0: बिल्कुल नहीं.
1: तो everything will be taken care of. जब तक वो जो आप वहाँ पहुँचेंगे let's say 7:30 I'm sure 8:15 then we'll have some artists on the stage. And then just Ali Azhar hanging and you know he'll like he will take over the stage. Achha, tickets kitne ki hai?
0: Okay, so VIP ticket is what hamare paas $88 ki hai. Sirf $88 ki aur you get a prime sitting area in

0: सेंटर फ्रंट ऑफ
1: वीआईपी 88
0: बिल्कुल 88 दैट्स इट हमें पूरा चाहिए कि कैलगरी आए इसको एंजॉय करके जाए एंड देन फॉर
2: द रेगुलर टिकट्स जो है हमारी $50 की है जी रेगुलर
0: और वो भी और एक स्पेशल पैकेज है हमारे पास $33 का भी
2: जी हमारे पास एक रेगुलर से पीछे इकोनॉमी सेक्शन है हमारे पास जो हमने रखा है $33 का तो ये भी हमने स्पेशल रखा है कि हम चाहते हैं कि हमारी यूथ और यंग जनरेशन भी इसमें आके फुल एंजॉय करे
1: जी जी जी
2: तो उनके लिए हमने स्पेशल सेक्शन रखा है वो आए एंजॉय करें और हॉल जो है वो ऐसा है कि हर किसी ने उसको एंजॉय करना है चाहे वो किसी भी सेक्शन में बैठा हुआ हो
0: और अली हैदर के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है जलाल जी तो मैं आपको बताऊं आपको पता है 1988 2000 2010 2020 अब ये 2026 चल रहा है
1: राइट
0: सो जनरेशन तो बहुत आगे बहुत ऐसे डिकेड्स आ गए सो अली हैदर साहब ने अली जफर के साथ अभी रिसेंटली 2025 में अपने सारे गानों को रिवाइज करने की कोशिश की फॉर द न्यू एरा और जालिम नजरों से नया वर्जन आ चुका है विच इज अ सुपर डुपर हिट विद अली जफर एंड अली हैदर सो ये इंटेंशन अली हैदर का ये था कि यूथ भी हम वो गानों को एंजॉय कर सके बिकॉज इनके गाने फॉर एवर है पुरानी जीन्स आप बात कर रहे हो कौन से साल में 1990 में पुरानी जीन्स और गिटार मोहल्ले की वो छत और मेरे यार
2: जालिम नजरों से हम बात करते हैं जालिम नजरों से भी
0: हम जालिम नजरों से भी बात करेंगे अभी मेरी नजर थोड़ी खराब हो गई है
1: No, that's good. Yeah, you are listening and watching Enjoy Coffee with Jalal on Radio Sasakam 94.7 FM. जिसको स्पॉन्सर किया है ऑप्टिम आईवर एंड ऑप्टिम मैट्री जिसके दो क्लिनिक्स है वन इन एवरी वन इन नोलन हिल इनका फोन नंबर 403-463-6666 फिर हमारे दूसरे हैं सुल्तान बैंक्वेट हॉल अगर आपने कोई भी इवेंट करना ऑर्गेनाइज या तो कोई अपना कॉन्सर्ट हो एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी हो वेडिंग हो यू कैन कॉल गुलाम रसूल एट 403-280-6677 लाइक अवर गुड फ्रेंड सोनी मिर्जा शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट यू नो आजकल जो है ग्रेजुएशन बहुत हो रही है अगर आपकी बेटी या नीस को अगर आप मेकअप करवाना हो शी इज द बेस्ट इनका फोन नंबर 587-888-9316 प्रिंटिंग करवाना हो या तो कोई डिजाइन करना हो यू कैन कॉल शफीन जीवानी एट 403-250-2202. He is from the Casket Printing. A2Z Vacuum for the new vacuum. And if you want to service your vacuum, you can take him to Hanif Mauji, our good friend. 403-207-4882. If you have a mortgage, so you can call Alisha Binning at 403-681-9687. 403-681-9687. She works for the TD Bank and she is a mobile specialist. If you want to call her, then she can come and give you all the good deals, the one she get from the TD Bank. So let's listen one of the song by Ali Hedar. Kya khayal hai?
0: Bilkul.
1: Inka jo naya jo abhi jo geet aaya hai, Dil kya? Dile Rangeen. Okay, let me play this one here. So let's enjoy guys this song by Ali Hedar. Ye inka ye naya brand new song abhi bhi release hua hai. Aur I just lost it now. Okay, oh, there we go. Okay, let's enjoy.

0: उनके पास जो बाकी रह गए हैं, बाकी इट्स ऑलमोस्ट सोल्ड आउट एंड कंग्रेचुलेशंस टू रिजवान भाई एंड हिज टीम फॉर वर्किंग सो वेरी हार्ड देयर प्रमोशंस उनकी. देखिए मुझे मजा इस बात का आ रहा है कि मैंने उनसे अप्रिशिएट भी किया रिजवान भाई को कि यार आप जिस तरह प्रमोट कर रहे हो ना शो को, बनता ही यही है कि इसी तरह इस इंटरेस्ट के साथ जब एक एज अ प्रमोटर रिजवान भाई जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं उसको, कभी कोई रील लग रही है, कभी कोई प्रोमो लग रहा है, फिर कोई रील लग रही है. इसी तरह जैसे भी आपने नया गाना जो था अली भाई का दिले रंगीन जो भी लॉन्च हुआ है वो आपने प्ले किया, तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है. मुझे बड़ा इंटरेस्टेड मैं हूँ इस शो के लिए क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ये शो प्रेजेंट किया जा रहा है कैलगरी में, और कैलगरी के लोग म्यूजिक लवर्स हैं बहुत, और यकीनन अली हैदर के बहुत ज्यादा फैंस हैं कैलगरी में, पूरी दुनिया में है, कैलगरी में भी है. सो आई एम श्योर दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी टू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइस ऑन द 12th ऑफ जून इन कैलगरी.
1: थैंक यू लॉरेंस भाई, ग्रेट गोज़ टू यू एज़ वेल कि आपने मुझे ये चांस दिया अली हैदर भाई के कॉन्सर्ट यहाँ कराने का, बहुत शॉर्ट नोटिस में दिया लेकिन इट्स अ वेरी ऑनर. एंड जैसे आपने कहा कि ही इज अ लेजेंड सिंगर, टिकट बहुत तेजी में जा रही है, तमाम लोगों से गुजारिश है टिकट बाय कर लें इससे पहले कि टिकट खत्म हो जाए इवेंटब्राइट पर.
2: तो वो जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, ग्रुप के साथ आ रहे हैं, प्लीज गो अहेड एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड स्पॉट,
0: क्योंकि उनको जालिम नजरों से भी मिलेगा, उनको करार भी मिलेगा, उनको संदेशा भी मिलेगा, उनको आड़ा पजामा मिलेगा, उनको पुरानी जींस भी मिलेगा, उनको पता नहीं क्योंकि अली हैदर वो आर्टिस्ट है जिनके गाने खत्म ही नहीं होते, उसी कितने ही गाने कितने हिट्स हैं, तो हम सबकी हर गाने से हम सबकी यादें वाबस्ता हैं. तो ये वो लेजेंड्स हैं जिनके गाने ऐसे हैं कि हर गाने पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई याद होगी हमारी कि हमने कहाँ एंजॉय किया था, कहाँ सुना था, क्या हुआ था, मतलब you name it and I can recall songs, you know.
3: Lawrence bhai, you know aapke liye to ye jo daily baat hai uthna baithna aapka jo hai mashallah itne bade bade artist ke sath hota rehta hai, lekin hum jaise ki you know kabhi kabhi jo hai mauka milta to aap itne bade bade artist ko kis tarah handle karte ho yaar?
0: Yeah Jalal bhai, it's been 35 years, thank god god has been very kind yaar. Baat ye hai ki dekhiye आर्टिस्ट के साथ रिलेशन बनाने का सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है, उसको आप दें रिस्पेक्ट और आप वक्त पे उसको पैसा दे दें. जो आपने कमिटमेंट किए वो आप वक्त से पहले उनको दे दें, आर्टिस्ट आपके पास से कहीं नहीं जाता. तो मेरे साथ तो वक्त पर दो तीन चीजें होती है ना, आपने अपनी कमिटमेंट ऑनर करनी होती है, ठीक है ना, आप पेमेंट वक्त पे कर दें और उसको रिस्पेक्ट दे दें. And that's it. Simple. देखिए आर्टिस्ट बहुत अच्छे लोग होते हैं, हाँ कुछ लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, कुछ लोग होते हैं जो खामा खाई टेंटर्म दिखाते हैं, मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली वर्किंग विद पीपल लाइक अली हैदर. ओ 35 years का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है. What a down to earth man he is.
3: माशाल्लाह. You know, जो हेलोंस भाई, ये आपका पहला शो है मेरे साथ, you know, let me ask you this. आपका पहला शो कौन था एज ए प्रोमोटर, आपको याद है?
0: सर मैंने पहला प्रोमोटर जो मैं बना था ना वो था मेरा शो 1990 में, एंड द वेरी फर्स्ट आर्टिस्ट आई बुक्ड दैट टाइम वाज मोहम्मद अली शिकी.
3: ओ माय गॉड,
0: नजर नजर तेरे ही चढ़ते, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, ठीक है ना, इस तरह बहुत बहुत मशहूर गाने शिकी भाई ने गाए थे. तो वो मेरा पहला शो था उनका, उनके साथ जो मैंने जिंदगी में किया, नजारे हमें देखे हम नजारों को, ये सारे गाने शेखी साहब के थे उस वक्त 1990.
1: आपने टाइम दिया हमें अपने कॉल पे आने के लिए, और
0: थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच.
1: इन कैलगरी एंड अली भाई,
0: सर बिल्कुल बिल्कुल अली भाई,
1: और ऑडियंस कैलगरी, और जैसे हमने लॉरेंस भाई के बारे में सुना आपने कि हाउ बिग पर्सन ही इज एंड ही इज कमिंग टू कैलगरी एंड ही इज ब्रिंगिंग अली हैदर विद हिम. So it will be very excitement. अगर हमने लॉरेंस भाई और यहाँ को यहाँ पर रिस्पेक्ट दी तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट आते रहेंगे.
3: वेरी वेल
0: सर, आते रहेंगे क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है.
2: कुछ कहेंगे आप कैलगरी के लिए प्लीज?
0: सर पूरे कैलगरी को एक मतलब फिर अस्सलाम वालेकुम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू ऑन द 12th एट द अली हैदर शो व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिजवान भाई एंड हिज टीम. So make sure you have your tickets well in advance, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि जी टिकट नहीं मिले. Looking forward.
3: Lawrence bhai, we love you. You know that.
0: Love you too, bhai.
3: We are looking forward to meeting you, inshallah.

0: with a different team because she helps everyone, because she loves everyone. That's why. Shehnaz, welcome to the show. Thank you so much for joining us.
1: Well, thank you so much. My apologies. Just took a wrong left turn, I guess. But I'm here to support everyone. Whoever wants any tickets, please look me up. My phone number is 403-607-6535. Please memorize my number and give me a call. I'll try and help you as much as I can. And I'm available 24/7. I don't sleep, trust me. So call me anytime.
2: दूसरी हमारी प्राइवेट इवेंट राइट है सो वो सारे लोग जो इवेंट राइट में नहीं जा सकते टेक्नोलॉजी का इश्यू है ईमेल नहीं होता है मुझे मेरी बेटी का वेट करना पड़ता है बेटी का सो शहनाज जी का आप सीधा फोन कीजिए पोस्टर पे उनका नंबर है वो नंबर आपको एक और बार बताएंगे आप इनको कॉल कर सकते हैं
0: इनको ऑलरेडी फोन आ रहा है
2: हाँ कॉल आना शुरू हो गया सो बस आप इनको कॉल कीजिए वो आपको कैश पे भी डील कर सकती है थ्रू ईमेल ट्रांसफर सो वी हैव स्पेशल फैसिलिटीज दिस टाइम वो सारी ऑडियंस जो आना चाहती है जिनको एक्सेस नहीं है इवेंट ब्राइट का शहनाज जी को फोन लगाइए वो आपको पैकेज देंगे ग्रुप पैकेज डिस्काउंट है एंड शहनाज जी को पूरा पूरा कैलगरी जानता है पूरा कनाडा जानता है और शहनाज जी ये भी कह रही है कि बॉलीवुड एंड डॉलीवुड को वो मिक्स करना चाहती है
0: बॉलीवुड एंड डॉलीवुड
2: सो आई वांट ऑडियंस फ्रॉम इंडिया टू राइट इंडियन कम्युनिटी भी हम चाहते हैं
0: लाइक यू नो आई एम श्योर कि जो जो हमारे नॉट द यंगस्टर्स वेरी यंग लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं दे नो अली है
2: बिल्कुल पुरानी जीन्स 11 वीक्स टॉप चार्ट्स पे थे इंडिया
3: शहनाज आपा के बारे में बोलना चाहूंगा कि मैं शहनाज आपा से दो तीन दिन पहले मिला हूं आई थिंक 3 डेज अगो और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि शहनाज आपा ये शो है और आपने इस शो को ज्वाइन करना है और आपने हमारा टीम का पार्ट बनना है और शहनाज आपा ने कुछ देर बाद उसके लिए एग्री किया आई एम वेरी प्राउड की हमारे साथ
2: वो ऐसा है कि ये यहाँ पे नहीं थी 14th को वो यहाँ पे आ रही थी शी वाज इन टोरंटो लेकिन अली हैदर रिजवान आपका प्यार शी चेंज हर टिकट सुबह सुबह इन्होंने थैंक यू शहनाज
0: Now, of course, you are watching a KWJ World Stage, jo hai Coffee Chalka segment on a radio system 94.7 FM. Ali Adar is, ek baar phir se, Ali Adar, coming to Calgary on the June the 12th. Dekhe, ye, jab bhi humne shuru kiya 8 baje show, sabse pehle, of course, jo hai Rizwan aur ye, jo hai Karim the, Shehnaz was running late. Phir jo hai international promoter, jo hai Vincent Lawrence, unhone join kiya hame. Phir inki ek aur team member, Zara, unhone join kiya hame. Now Shehnaz is here. You can feel it. You can see कि कितना excitement है पूरी team में कि हर कोई लगा हुआ है कि किसी तरह जो है हमारे legend आ रहे हैं उनको जो है पूरा उनका इस्तकबाल भी हो और show भी पूरा full हो और अगर आप miss करेंगे I think that's going to be bad luck. Like I don't think so. He's going to come back very soon. So get your ticket as soon as possible or ticket कितनी एक बार फिर से?
2: बिल्कुल $33 में आपको अली हैदर मिल रहे हैं 1980 पाकिस्तान का pride और 50 में आपको regular VIP मिल रही है और VIP बिल्कुल सुपर वी आई पी इज ओनली 88 प्लस इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है आप फोन तो कीजिए और जल्दी कीजिए अगर आपको अच्छी सीट चाहिए और ऐसा ना सोल्ड आउट हो जाए और हम वेरी लिमिटेड सीट्स वी हैव हम फिर ओवर सोल्ड हो जाएंगे फिर हम आपको कुछ नहीं कर सकते अली हैदर आ रहे फर्स्ट टाइम इन कैलगरी विद अ रॉकिंग रॉकिंग न्यू एरा आप नए अली हैदर को मिलेंगे इस बार
3: हमारे पास एक और भी अपॉर्चुनिटी है स्पॉन्सर्स के लिए जो स्पॉन्सर्स इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स करना चाहें इसमें शामिल होना चाहें हमारे पास उनके लिए बहुत कुछ है और वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा फोन नंबर 587-434-6657 पे और वो बात करें और वी विल दिस शो विल बी अ रॉकिंग शो ये गारंटी है
2: और मैं स्पॉन्सर्स के लिए एक और बात भी कहूंगा कि देखें स्पॉन्सर जब आपको पैसे देते हैं तो उनको अपना हक भी चाहिए होता है सो अली हैदर के जितने भी शोज आप यूएसए में देखेंगे मैं चाहूंगा सारे स्पॉन्सर्स आए सुने मैं क्या कह रहा हूं अली हैदर के जितने भी ह्यूस्टन में डैलस में अपने शोज देखे वो सारे मिलियंस के ऊपर हिट्स लेते हैं सो अगर ये कैलगरी में आ रहे हैं और कैलगरी का शो भी मिलियंस में हिट जा रहा है तो आपका प्रोडक्ट आपका बिजनेस मिलियंस में हिट्स में जा रहा है सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप उसको मत मिस कीजिएगा
0: थैंक यू वेरी वेल सर वो लाइक ये हाउ अबाउट द पुरानी जीन्स गाना प्ले करें अभी
2: अगर आप ये प्ले करें
0: लेट्स एंजॉय पुरानी जीन्स ऑल ऑफ अस The one who are listening and watching on Facebook. Again, you are listening to Coffee Chala on a radio station, 94.7 FM.

0: One and only Ali Hazard guest coming to Calgary on June the 12th, 2026 at Astoria Banquet Hall, shaam ko 7:30, shaam ko doors open and inshallah show starts around 8 o'clock with some local artists. Or all of us are here, myself, Rizwan, Shaina Zevan Murji and the Kareem Sumar. Tickets aapne le lene hain, jal jaldi le lijiye. Love to see everyone there. Tickets are only starting $33 or jo apne VIP jaise kaha Kareem, $88 for the VIP. How can you go wrong, guys? This is the one. Hum jo saalon se sunte aa rahe hain Pakistan se. Now he's coming jo hai Calgary for the first time. Show your love, show your jo hai passion for the music, for the art. Especially, you know, hum hamesha bolte hain ki India ke itne bade bade artists aate hain, jaise abhi jo hai Sonu Nigam aa rahe hain. How come yahan ke Pakistan ke bade artists nahi aa rahe? Now this is your time to show your love and your passion for the Pakistan music, for the Pakistan artists. Jam pack kar do yaar, just aa jao for $33, you cannot go wrong. तो ये जो गाने हम सुन रहे हैं आज वो आपको लाइव मिलेंगे विद वन एंड ओनली अली हज़र विद द लाइव बैंड
1: अभी से काम कर रहे हैं दे आर सुपर गुड
0: हियर वी गो
1: जॉनी बी को क्रेडिट जाता है सारे म्यूजिशियंस को अरेंज किए उन्होंने जो पाकिस्तान के फेवरेट पुराने म्यूजिशियंस हैं दे आर ट्रेनिंग देम सो मजा आएगा
0: तो प्लीज कम एंड ज्वाइन इट विल बी ऑसम शो जी रिजवान भाई ओके ओके बाय द वे रिजवान भाई इज अ ऑर्गेनाइजर आई नो वी आर टॉकिंग मोर
2: मैं शहनाज आपा को एक मिनट मुखातिब करूंगा शहनाज आपा की एक अच्छी डील है सब लोगों के लिए यहाँ पे
0: ओके गो फॉर इट
3: सो आई वुड लाइक टू कॉर्डियली इनवाइट एवरीवन टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्पेशल सेविंग्स

0: for this incredible performance.
1: Mm-hmm.
0: We have a limited time promotion of 15% off the ticket prices, all three tiers. And if you were to buy the $33 ticket, after 15%, you're literally paying somewhere between $28 and $29. Okay. How can you complain?
1: Oh, go 50% off.
2: 15. 15. Okay. Promo code itna pyara banaya Shehnaz Diamond Murji ne hai. So humne kiya SDM 2026. Main wapis kehdu SDM 2026. Jab bhi aap promo code dalenge, you will get straight 15% off. So I've just imagined $28. Main ko Ali Adel wo bhi jo. You can't go wrong.
0: No, you can't go wrong.
2: Nothing can go wrong here.
3: Ye exciting news thi mere liye.
0: And this Purani jeans, I was already dancing in my chair. I don't know what I'll do on the day off, but hey, that's me.
2: Sabko milega, sabko milega.
1: Sabko milega, yes. Jo aaj ka jo show hai, usko sponsor kiya hai, Optima Eyewear and Optometry, jinka phone number 403-463-6666. If you want your glasses or you can say the contact lens, sunglasses, anything, you can just come visit either Airdrie or Nolan Hill, Northwest Calgary. Sultan Banquet Hall, if you are looking for any anniversary, wedding, anything, you can book the hall by calling Ghulam Rasool, 403-280-6677. Makeup artist, Sony Mirza, agar, you know, aajkal jise jo hai graduation bahut ho rahe hain, agar Shehnaz ko makeup karwana ho, she can call Sony Mirza, 587-888-9316. Agar aapne printing karwani hai, ya to ko jo hai, design karwana, anything, you can call Shafin Jeewani at 403-250-2202. A to Z vacuum, agar aapne vacuum service karani, if you want to buy the new vacuum, call Hanif Mauji, 403-207-482. And if you're looking for any mortgage, call mobile mortgage specialist. I'm sure the Shehnaz knows her. Alisha Binning, 403-681-9687. 403-681-9687. Again, if you want to sponsor the show, you can call Rizan Bhai. Rizan, aapka number?
3: 587-434-6657.
1: So, awesome. And Shehnaz, your number again?
0: And my number again is 403-607-6535. And please remember the promo code SDM2026.
1: Super. And Karim?
2: 403-714-2373. You can phone me. जितने भी लोग हैं प्लीज, लेकिन शहनाज को यह जरूर रखिएगा, आपको 15% ऑफ मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए है, जल्दी कीजिए।
1: अगर आप मुझे याद रखोगे, रिजवान को या करीम को, कोई फायदा नहीं है।
2: शहनाज
1: एस डी एम 2026, हमें जो है, अब जो माय गुड फ्रेंड जो है सलमा जदावी अभी जो है देख रही है, विंसन लॉरेंस ही इज वॉचिंग फ्रॉम जो है टोरंटो एज वेल, यस ही इज गेटिंग रेडी टू कम फॉर द शो बिकॉज ही इज द इंटरनेशनल प्रमोटर। यार जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के, यू नो, जो लेजेंड्स में आते हैं, ही इज वन ऑफ देम, अली हैदर, जैसे अपना अली शेखी हो गए या तो आलमगीर हो गए, बिकॉज दिस, यू नो, दैट्स द एरा जब इन्होंने खुद का ये सब शुरू किया था, तो और ये पहली बार आ रहे हैं, तो
3: हमने
1: गेट योर टिकट्स यार,
3: हमने अली हैदर को बताना है कि हमारा हाउस उनके आने से पहले फुल हो चुका है।
1: यस,
3: आने से पहले उनके हाउस फुल हो चुका है, तो उनको पता होना चाहिए, हम उनको बताएंगे कि हाउस फुल है उनका, ताकि वो फुल एक्साइटमेंट के साथ वो यहाँ।
2: लॉरेंस जी के बारे में भी बता दूं कि इन्होंने भी रिक्वेस्ट किए कैलगरी से कि हम आपके मेहमान हैं, आपको मेहमान नवाजी करनी है, सो मेजबान मेहमान दोनों वहीं होंगे, प्लीज जल्दी से टिकट्स लीजिए और ये शो को बहुत सक्सेसफुल करते हैं। बहुत प्राइड है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि अली हैदर इज कमिंग।
1: हमें जो है तबस्सुम जो अब्बास भी देख रही है,
2: बिल्कुल हमारी टीम का पार्ट है,
1: फिर अशरफ मलिक भी देख रहे हैं, द वन हु जो है अपना पोस्टिंग कमेंट, ज़ेरा, ऑफकोर्स ज़ेरा जो हमने ज्वाइन किया अभी, मीना बंदाली में हमें देख रही है, नवीद अनवर भी हमें देख रहे हैं, सो देयर आर सो मेनी, एंड ऑफ कोर्स यू नो आई एम श्योर यू आर लिसनिंग एज़ वेल, वन एंड ओनली केडब्ल्यूजे वर्ल्ड स्टेज ऑन कॉफी विद जलाल, ओनली ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM। जाने का वक्त आ गया दोस्तों, आखिरी कमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, स्टार्ट विद द करीम।
2: बस ये गुजारिश है कैलगरी, जल्दी से टिकट्स लीजिए, स्पॉन्सर्स जल्दी से आइए, अली हैदर आपसे प्यार चाहते हैं, और ये वही अली हैदर है जो 1990 में पाकिस्तान में थे। सो सीनियर्स जूनियर्स और यंगस्टर्स, आप सब एंजॉय करने वाले हैं, सी यू ऑन 12th ऑस्ट्रेलिया 7:30 PM, 33, 50 and 88।
0: Yeah, and also the name of the artist itself is so heavy if you really think about it. Ali and then Heather.
2: Oh my God.
0: Honestly, like, you know, besides his talents, I think even his name speaks volumes.
1: Yeah.
0: And once again, please call me anytime. As I said, I'm up and about 24/7. And please do use my promo code SDM 2020.

एक्सेल फोटो स्टूडियो जरा खबरों वालों होंदे हैं जी। फिर पहला मार्केट ते झात मार लीए। क्रूड ऑयल कच्चा तेल इस वेले वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट जो है जी 92 to 93 डॉलर प्रति बैरल दे विच ट्रेड हो रहा है। WTI कल नूं थोड़ा जिहा डाउन है। जो ब्रेंट क्रूड है वह 95 to 96 के दरम्यान ट्रेड हो रहा है, कल नूं यह भी थोड़ा जिहा डाउन है। सो तकरीबन बराबर भिड़ते हुए यह दोवें किस्मों के तेल दीयां कीमतां वाले जिहड़ी बैरल की कीमत है, आम तौर पर जिहड़ा ब्रेंट क्रूड है वह वधिया मन्निया जांदा, उसकी कीमत थोड़ी जी उच्ची हुंदी है। जे असीं करंसी की गल कर लईए तां US डॉलर जिहड़ा है मजबूत है। एक US डॉलर दे अज तुहानूं मिलणगे $1.39 कैनेडा दे, 39 सेंट्स, $1.39 फॉर 1 US डॉलर। USA दे डॉलर दे मुकाबले इंडिया दा रुपया 96 रुपए ते 2 पैसे मिल सकते ने अज तुहानूं, 96 रुपीज़ एंड 2 पैसे। कनेडा की गल करिए तां कनेडियन डॉलर थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है। इस वेले इंडियन रुपए दे 68 रुपए ते 85 पैसे मिलणगे, 68 रुपीज़ एंड 85 पैसे। ये मार्केट्स के हवाले नाल गल। तो जो मिडल ईस्ट के हालात ने, जिमें कि अप डाउन उत्थे हो जाता है, सो उस दे चलदियां ये अनसर्टेनिटी जिहड़ी है, ये अनिश्चितता का माहौल जिहड़ा बना होया है, उस करके सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हाल की घड़ी ये कहा जा रहा है कि USA की अगवाई दे जिहड़ी गलबात चल रही है उस विच इजराइल ते लेबनान वाले जंगबंदी ते सहमत हो गए ने, ते ईरान दे उपर होर जंग रोकण लई US दे हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने, जो रिपब्लिकन ने बहुते, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया सी कि ईरान वालों होर जंग ते कोई ध्यान ना दिता जाए। इस वेले अज के प्रोग्राम में सवाल फीफा विश्व कप के नाल होगा, उहदे नाल संबंधित होगा फीफा वर्ल्ड कप का, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है कनेडा USA मैक्सीको दे विच। कनेडा दे विच कुछ मैच होण जा रहे हैं, जिस विचों जिहड़े मैच जिहड़े ने कुछ होने ने वह टोरंटो ते वैनकूवर विच होणगे। अल्बर्टा नूं कोई मैच नहीं मिलिया। मैनूं कोई सवाल पूछ रहा सी कि बड़ा वड्डा कॉमनवैल्थ स्टेडियम एडमिंटन विच है, कैलगरी विच भी हैगा स्टेडियम, तो फिर क्यों नहीं। खैर पता नहीं, जिहड़े वड्डे सिटीज़ ने उन्होंने दो नूं मिले ने जी। सो फीफा दे वड्डे वड्डे नाम ठुक रहे ने कैनेडा USA ते मैक्सीको विच, ते ध्यान होवेगा सारिआं दा। दुनिया विच जो चल रहा जिस तरह दा हालात ने लड़ाइयां नूं लैके खास तौर पर, उस दौरान असीं कह सकते हैं कि खेडां जो कि आम तौर पर शांति दा सुनेहा दिंदियां ने, इस बार भी वर्ल्ड कप कुछ इस तरह दा दूत बन के आवे। 39 दिन टूरनामेंट चलेगा, ते इस विच June 11 तो पहला मैच जिहड़ा ओपनिंग गेम होवेगी मैक्सीको वर्सिज साउथ अफ्रीका, ते June 12 कैनेडा दा बोसनिया हर्जेगोविना दे नाल मैच होवेगा, ते उस दिन USA दा पैराग्वे दे नाल मैच होवेगा। सो ये मैच होण जा रहे ने जी 39 दिन वास्ते। विश्व दा फुटबॉल दा महाकुंभ जिहड़ा है वह होवेगा, ते वड्डे वड्डे खिडारी टुकणगे, ते इन्हां नाल संबंधित मर्चेंडाइज खूब विकेगी। जदों बच्चे कहणगे कि सानू आ शर्ट जां आ कोई होर चीज़ जां जिहड़ी आ उहनां दे नां नाल संबंधित जिहड़ी आ लिया के दित्ती जावे। खैर फीफा वर्ल्ड कप नाल रिलेटड सवाल भी होवेगा साडा अज दा, जिस ते 4 गिफ्ट कार्ड असीं देणे ने। वैसे मैं कल कहा सी कि सौखा जिहा सवाल पुछणा, चलो सौखा ही समझ लो, असीं कोई बहुता हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना कि इस जवाब ते असीं कार्ड नहीं देना। असीं थोड़ा जिहा जो जिहड़े स्रोते साडे गल नूं समझ गए जां सानू समझा गए उन्हां नूं गिफ्ट कार्ड दे ड्रा दे विच असीं शामिल कर दें जाणा। खैर बाकी दीआं खबरां वल नूं चलदे आं। AI ने दुनिया दे विच वड्डा घेरा पाया, ते आप जी नूं पता होएगा कि फरवरी महीने दे विच जो फरवरी गुजर के गई है जी, दिल्ली दे विच